0: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
1: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
0: चला, इतना बढ़िया सोच तुहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
2: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर शीशा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
3: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
4: कार्यक्रम का लागि साथीहरु त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल, ब्यानरहरु टाँगेर तयार पारौ है।
5: ला, सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
4: ल ल, के भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौ त, तुरुन्तै तयार भइहाल्छ।
5: हजुर, वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
6: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0775205510, मोबाइल 9857080510।

0: छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
4: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी कि नवे छावे के, लेकिन
3: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
5: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
6: संपर्क खातिर
5: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान, मोबाइल 9847768733 और 9814960630।
7: नमस्ते, म डम्बर नेपाली, सुन्दै गर्नुहोला रेडियो परासी 90.2 मेगा।

0: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
1: हाय देखा, अब लाज कौन बात के हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग

0: रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559574700 और 9559544836।
1: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
2: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गयी, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
1: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
3: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट CPVC PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
0: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठी बारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
4: सुनत बाड़ा हो, किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
2: हा तेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता आ तनिको साफ से नाय फरियाता।
5: भाई देखा, तू सब के ही कुल समस्या बाते, एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
6: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँस के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
7: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर फैले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785201046 और 0785210033।
8: ओहो, कस्तो सफा र चमकिलो कपडा, पक्कै पनि तिमीले गाई छाप सरफले नै धोएको हुनुपर्छ।
9: हो त, आजभोलि गाउँ सहर जता ततै गाई छाप सरफ नै प्रयोग गर्छन्। साथै यसको खरिदमा साइकल उपहारको पनि व्यवस्था छ। अनि सुन्नुहोस् त, कपडाको दाग र धब्बा हटाउनलाई त एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वास प्रयोग गर्नुपर्छ नि। जसको खरिदमा आइफोन उपहारको पनि व्यवस्था छ। विचार गर्नुहोस् है।
8: हजुर, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरी नेपाली हुनुमा गर्व गरौं। उत्पादक साफी सरफ उद्योग, मायादेवी गाउँपालिका 1, पाकडी कपिलवस्तु। सम्पर्क 9826648200।
10: के भएको यस्तो? नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
9: इसुमी, पहिला त मोबाइल कम चलाऊ, दोस्रो आँखा चेक गराइहाला क्या?
10: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
9: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
11: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरवा आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापी द्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
12: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
11: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली, रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 9819069917 र 9965934254।
13: नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि ₹1,00,000 दुर्घटना बिमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 0785201124 र 9842799011 सम्पर्क गर्नुहोला।
14: ए चाचा देखा न हमार आखिया के नजरिया कमजोर हो गई बा का हो हमके त एकदम धुधुराह लौकत
15: ए मर्दवा अन्हरे मनई से आगेला पूछे।

0: त हाम्रो बा अखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गई बाड़ी।
1: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा। अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
2: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मांस उभरल टेढ़-मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
3: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 98 6 72 28 015 और 98 572 22 15।

0: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
1: ला सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
0: ल ल केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
1: हजुर, वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड, प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
2: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोपराइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0775205510, मोबाइल 9857080510।
3: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी,
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता है सत साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब, एक्सरे, वीडियो एक्सरे, USG, ECG तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
3: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
5: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 9861745737।
6: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
7: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
8: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म, र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरी द्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
9: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झा द्वारा भिडियो एक्सरे, ओपीडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
6: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0785906699 र मोबाइल 9857047282।
10: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़-मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
11: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
5: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
3: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया, और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
10: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे, मोबाइल नंबर 9559574700 और 9559544836।
12: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डीजल लगायत का अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ

0: जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गांव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
1: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
2: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
3: नमस्कार, म लोक गायक वैकुण्ठ महत। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: के भयो र किन रुन्नु भएको?
1: कहाँ रोएको र बुहारी, आँखाबाट त्यसै आँसु बगिरहन्छ, घाममा हेर्नै सक्दिन, मासु पोलाछ भन्छन्, खै के भयो भयो।
2: मम्मी मलाई पनि बुकेने बित्तिकै टाउको दुख्छ।
0: ए भनेपछि दुवैजनालाई आँखाको समस्या भएछ। ल बा हिँडिहाल्नुहोस् परासीको भगवती नेत्रालयमा आँखाको उपचार गर्न।
3: हजुर, परासीमा पहिलो पटक दृष्टि रोग विशेषज्ञद्वारा आँखा सेवा सञ्चालन।
0: हाम्रा सेवाहरू
3: मोतियाबिन्दु, आँखामा मासु पलाएको, आँसु नली बन्द भएको, आँखामा फुलो परेको, घाममा आँखा हेर्न नमिल्ने, टेढो आँखा भिजन थेरापीद्वारा सोझो बनाउने, अल्छी आँखाको उपचार, कम्प्युटर प्रविधिद्वारा आँखा जाँच गरी पावर, बिना पावर चस्मा तुरुन्तै तयार, सम्पूर्ण किसिमका कन्ट्याक्ट लेन्स, सबै उमेर समूहका लागि ब्रान्डेड चस्मा, कम्प्युटर मोबाइल ल्यापटप टिभी लगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोगकर्ताका लागि विशेष किसिमका चस्मा उपलब्ध छ।
0: सम्पर्क भगवती नेत्रालय रामगराम 3 परासी सुनवल रोड आँखा अस्पतालको ठिक अगाडि। मोबाइल 9862728015 र 9857022215।
4: म सानै उमेरमा बेचिए, बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाँचेर, तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ, यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र? खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
5: दिदी म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे, झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति, जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु दिदी।
6: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
7: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
6: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
8: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
9: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज।
8: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य, आवर डटर्स इन्टरनेसनल।
10: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
11: ला सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
10: ल ल के भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
11: हजुर, वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
12: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0725205010, मोबाइल 9857080510।
13: ओ माय गॉड, इते अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगा ता फिर पड़क गईल।
14: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिते सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
15: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
16: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठुठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918510981।
17: सुनत बाड़ा हो, हाई टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
14: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
18: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
19: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए बात 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
17: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559445436।
20: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
14: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
20: चला, इतना बढ़िया सोच तोहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
21: जी हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट CPVC PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
15: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठी बारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
9: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पश्चिम नवलपरासीको पहिलो रेडियो, सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: सितारों की मस्ती, संगीत के नशा,
2: माया हो कैसिन, पागल बनाए महिन।
3: आपके नचाए झुमाए वाला गीत,
4: बुलेट पहुँचीजा, बुलेट पहुँचीजा, ले चले घुमावे बुलेट पहुँचे,
3: आपके दिल बहलाए वाला गीत,
5: जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है।
6: फरक दिन फरक प्रस्तुति।
1: जी हाँ संगनीय, भोजपुरी गीत संगीत के अनुपम उपहार।
7: बढ़निया दिहिया से सर के जिया रही रही के बहके,
8: सुने के न भुलायल जे कार्यक्रम गीत बहार।

नमस्कार, जयराम जी के। सुरेश यादव उपस्थित हो गेल बाड़ी आज सोमवार के दिन में। और सोमवार के दिन आपके जरूर मालूम हुई कि कार्यक्रम गीत बहार के आज के दिन में रहकर हमन के सवाल के जवाब लिया जाला। तमाम किस्म के सवाल के जवाब हमन के लग बाटे। सवाल के जवाब लेने के दौरान में जेकर जेकर दिहल जवाब सही रही ओके विजेता के लिस्ट में रखल जाए, और अंतिम में जात जात एक जना के विजेता बना के आपके मोबाइल में 100 रुपया के रिचार्ज कार्ड हमन के सीधे भेजत आवत बाड़ी जा। वो अपने पाए सकल जी जौन कार्यक्रम में हमन के पुरस्कार की व्यवस्था के दिले बने मॉडर्न टेलर एंड शटिंग शूटिंग जौन राम ग्राम 5 परासी में अवस्थित बाटे। प्राविधिक में हमन के सुरेश जी बाने। कार्यक्रम संचालन के दौरान में सुरेश यादव उपस्थित बाणी। साथ में हमन के शंभु चौधरी जी भी प्राविधिक में बाणे। और कार्यक्रम संचालन के दौरान में तमाम जनी से बातचीत हुई 98 18 17 51 51 यह नंबर में फोन करल जाए। कार्यक्रम के स्वागत स्वरूप हमन के जो गाना बजावल जाता कहें कि हमन के आज हरितालिका तीज भी होके नहीं तीज के दिन में खास है कि महिला लोगन के विशेष त्यौहार के रूप में हमन के मानल जाला। ये तीज के अवसर में तमाम शिवालय मठ मंदिर हो गई और तमाम ऐतिहासिक स्थल जोन बाटे जैसे हमन के पश्चिम नवलप्रासी के हमन के सुनवल 11 केरवानी स्थित जोन बाबा बर्दगोरिया धाम बाटे जोन एकदम चर्चा में आयल जगह होके आज हमन के देखल जाए तो हजारों आदमी लोगन एकदम वहाँ दर्शन करे खातिर एकदम सुबेरबे से पुग जाना नहीं तो क्रम भी चलत बाटे। तमाम जगह में भी ऐसे छिटपुट मेला महोत्सव के आयोजना भी भेल बाटे नहीं। अब आपके दिन आज अच्छा तरीका से मिली केना जना मेला देखे जाए जे केना जना घर ही रहल जे फिर भी हरितालिका तीज भैले के वजह से तमाम किस्म के अच्छा अच्छा पकवान भी परिकार भी बनल हुई नहीं और खैले वैले के तैयारी में तमाम जनी होकल नहीं। लेकिन थोड़े के समय मिल जाए तो जरूर फोन डायल करल जी एक के छीन के बाद में 98 18 17 51 51 यह नंबर में फोन डायल करल जी। शुरू में रह के अमन गेठो गाना आपके लिए बजाया जाता है।

0: गीत हमन के सुनाओल गेल आपके लिए और कार्यक्रम में हमन के बातचीत कैल जरूर हमन के नंबर खुला हो गेल बाटे 9818171151 यह नंबर में हमन के एक घंटा के समय अवधि पर आपसे हमन के सवाल के जवाब लियल जाए। फोन संपर्क में पहला कलर के रूप में कौन सा एरिया बना। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बोलल जाता?
1: हम काठमांडू से कृष्ण जी बलामी बोलत।
0: कृष्ण जी बलामी जी के फोन आ गई। और हमन के कृष्ण जी के खान पीन हो गई एकदम और हरिताली का तीज के चहल पहल खास है कि हमन के काठमांडू में का बाटे कृष्ण जी?
1: एकदम बनिया, एकदम बनिया बाटे, एकदम बनिया बाटे। खाना पीना हो गला, आ के हो गला कि ना?
0: हां, खान पीन हो गेल बाटे। और हमन के खास है कि काठमांडू में हरिताली का तीज के रौनक हमन के कौन रूप में लिए सकल जी, कौन रूप में देखे के मिलल हुआ? ल ठीक बाटे, फिर भी एकदम हरितालिका तीज के रौनक देश भर बाटे नै। ल ठीक बाटे। और कार्यक्रम में रही कि आपके खातिर हम एठो प्रश्न रखा तली जवाब दिल जाई। नेपाल में जेनजी शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष कौन दिन मनावल जाला? ऑप्शन एक में बाटे भादो 23 गते, दुई में भदौ 24 गते, तीन में भदौ 25 गते, चार में भदौ 26 गते। भदौ 23 गते कहल जाइ नै? नेपाल में जेनजी शहीद दिवस मनाए खातिर सरकार सार्वजनिक विधा भी हमन के देहले रहल भादो 23 गते। दुई दिन नेपाल में जेनजी आंदोलन चलल रहल 23 और 24 गते, लेकिन नेपाल सरकार का कहले बाटे भादो 23 गते शहीद जेनजी शहीद दिवस मनाए की घोषणा कैले बा। आपके दिल जवाब एकदम सही बाटे। छुटल जा, नमस्ते। मन के कृष्ण बलामी जी रहले, मन के काठमांडू से फोन कैले रहले, इनकर जवाब एकदम सही बाटे। मन के जेनजी आंदोलन 2082 कार्तिक 17 गते जोन भइल रहल, 17 गते मन के दुई दिन चलल ये आंदोलन में तमाम जनी शहादत प्राप्त कैले बने। दुई दिन के अंतराल में 45 जना जोन आदमी लोगन शहीद भइले, ओके शहीद घोषणा भी सरकार के भइल बाटे। और तमाम जनी घायल बने, केना जनी घायल लोगन के पीड़ा अपन मन में दुख दर्द बटले बाटे नहीं सरकार बनल बाटे नया सरकार। ऊ जेनजी आंदोलन प्रति जौन शहीद गुमौले जौन परिवार लोगन बाने ऊ सबके अपेक्षा आशा भरोसा अनुसार जरूर काम भई गई कि सरकार दिन रात लगल बाटे नहीं। प्रश्न मन कृष्ण बलामी जी के खातिर रखले रही जा, मन के काठमांडू से फोन कैले रहना। फोन संपर्क में फिर से कौन सही रहे बाने। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कहाँ से बोलल जाता? चितवन बाट सूर्य मिजार। ल ठीक बाटे, मन के सूर्य मिजार जी से बहुत दिन से बातचीत करत आवत बाड़ी जा और कार्यक्रम सुनत बाड़ी जा। सूर्य मिजार जी कार्यक्रम सुनत बाड़ी जा, आपके खातिर एटो खेल संबंधी प्रसंग बाटे। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर तथा विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कहिया लिहन? आपके लिए प्रश्न ये हो, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर तथा विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कहिया लिहन? ऑप्शन एक में सन 2026 अगस्त 29, दुई नंबर में अगस्त 28, तीन नंबर में अगस्त 30, चार नंबर में अगस्त 31। 28, 29, 30, 31 कौन हो? हाल साल हो, कुछ समय पहले हमन के अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले ले बने। कहिया हो? 2026 अगस्त 28, 29, 30, 31। ऑप्शन अगस्त 28, 29, 30, 31। अगस्त 31 के फाइनल मानल जा। अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सन 2026 अगस्त 31 तारीख संन्यास के घोषणा लिया, एकदम सही जवाब हो। कार्यक्रम से छुटा जा, नमस्ते। सूर्य मिजार सिन्धुली से फोन कैले रहल प्रयास ऐसे जारी रखल जाइ प्रयास कैल जाइ तो जवाब जरूर दिएले में एकदम आसान हुई कहें कि मन के लग तमाम रोचक प्रसंग समय सान्दर्भिक प्रसंग बाटे ई सवाल के जवाब लिए वाला दौरान में अगर दिमाग में रखले रहल जाइ आज नाई दसों पंद्रह बीसों वर्ष के बाद भी एकदम अच्छा प्रश्न हुआ मन के कभी भी कहीं भी सवाल के रूप में आ सके यह नाते थोड़े से दिमाग के लगा के पड़ी फिर भी चार ठो ऑप्शन मन के लग रहे करेला। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते
0: नमस्कार कहाँ से बोल जाता रमुआपुर से ओमनाथ कंवर हमन के दरिय सुनवल क्षेत्र से फोन आ गए सुनवल में ते आज खूब भव्य एकदम मेला तीज के लगेला नहीं मेला लगेला हमन के ओमनाथ कंवर कह लीजा ओमनाथ जी से पहले भी बातचीत भइल बाटे और आज हमन के जैसे अब आप ते ढेर दरियाबाड़ी जरा महपुर नहीं तो हमन के सुनवल में जैसे पहले जोन चौराहा में जोन मेला लगत आवत रहल सुनवल परासी रोड में आधा मेला लगे आधा मन कुछ कुछ जोन चौराहा बाटे वहाँ भी लगे तो आज के मेलवा कहाँ चौराहा में बाटे ओमनाथ जी चौराहे में लगल बाटे केना मनी तो कहत रहें कि हाट बाजार जहाँ लगल बाटे यहाँ रास्ता थोड़ बहुत बनत बा या नाते वहाँ व्यवस्थापन करही कहीं के बात रहल का तमाम जन आदमी के जन भरम में होइ है नहीं लेकिन वैसा नहीं हो माने जोन सोनवल परासी रोड बाटे जोन सुनवल चौराहा बा वह आसपास मेला लगल बा नहीं उसे भव्य सभ्य ते बाबा बर्द गोरिया में तो लगबे करेला हर एक आदमी के मालूम बढ़ले बाटे नहीं ले समय मिली तो गरम गरम जिलेबी खाए के मिली कि रे अब समय नहीं मिली साथ नहीं दे ऐसे हो नहीं चल जा ठीक बात है और कार्यक्रम में रह के आपके लिए हम प्रश्न रखत बाड़ी जवाब दिया जाए। रसुआ के भोटे कोसी नदी में आयल 2083 साल के भीषण बाढ़ी के कारण विपत संकष्ट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा कल गेल जिला तरे दिहल में से कौन नाई हो प्रश्न बुझलि जा हाँ चरे तरे चार ठो ऑप्शन बाटे जेमे नेपाल का कैले बाकी पांच ठो जिला के विपद संकट घोषणा ग्रस्त घोषणा कैले बाट जेमे से चार ठो हम जिला के नाम बोलब ओमे से एक ठो नाई मिली जवन नाई मिली तवन अपने बतावल जाए। एक नंबर में रसुआ दुई नंबर में चितवन तीन नंबर में नुआकोट चार नंबर में धादिंग विपद संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा भैल में से तरे के जिला में से कौन नाई हो चितवन कहल जाए चितवन कहल जाए नहीं 2083 भादो 10 गते रसुआ के भोटे कोसी नदी में एकदम भीषण बाढ़ी आइल रहा नहीं बाढ़ी के नाते से इतना ज्यादा क्षति नेपाल सहे के पड़ल नहीं तमाम आदमी के जनधन के क्षति भइल बाटे कितना आदमी बेपत्ता माने नहीं अब केना अब नुकसान भइल के तो हिसाब किताब नहीं बाटे जेमे से पाँच ठो जिला के नेपाल सरकार का कैले रहल विपद संकष्ट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा कैले रहल ओमे से चितवन जिला नहीं पड़ला एकदम सही जवाब हो पाँच ठो जिला में से एक ठो रसुआ एक ठो नुआकोट धादिंग तनहू गोरखा पाँच ठो विपद संकट ग्रस्त अब क्षेत्र घोषणा भेल जिला हो आपके दिल जवाब भी एकदम सही बाटे छुटल जाए। नमस्ते तीन जना से बातचीत भेल तीनों जना के दिल जवाब एकदम सही बाटे एक दूसरे के बात फोन ऐसे अगर आ जा तो कार्यक्रम सुने वाला आदमी के कितना मजा आई हमन के चलाए वाला लोगन के तो एकदम पूरा दिल बहार बन जाला एकदम नहीं तो वही के मारे हमन के बार बार अनुरोध कर जाला कि कार्यक्रम सुने वाला तमाम श्रोता मित्र लोगन आज नाई बिहान नाई हर रोज आपके फोन सहभागिता ऐसे चाहिए हमन के वही के मारे रेडियो सुनल जाए तो फटाक फटाक ऐसे फोन के साथ दिल जाए तो समय के बचत हुई ढेर गाना सुने के मिली प्रचार प्रसार विज्ञापन जोन बाटे ढेर सुने के मिली तो और ज्यादा जानकारी मिली फोन संपर्क में कौन सा एरिया बना। हेलो नमस्कार।
1: हेलो सर
0: नमस्ते। नमस्ते जयराम जी के का हालचाल बाटे
1: एकदम सर ठीक ठाक बात नहीं सुनावल जाए
0: एकदम ठीक ठाक बा हमरो आज ते सितंबर 14 तारीख होके हमन के महेंद्र जी के मालूम बा सितंबर 14 तारीख हो आजू एक ठो हमन के 20वीं एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता जल्दी से चार पाँच दिन में शुरू होके वाला बाटे जापान में संचालन हुई नेपाल भी हमें सहभागी होके वाला बाटे ये संबंधी एक ठो प्रश्न बनौले बाड़ी प्रश्न के जवाब आपसे लिया ठीक बा ल ठीक बा आपके लिए प्रश्न हो सन 2026 में 20वीं एशियाली खेलकूद में कुल कितना ठो खेल समावेश बाटे टोटल खेल जापान में होके वाला 20वीं एशियाली जोन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना हो रहा बाटे ओमे टोटल कितना ठो खेल समावेश बाटे आपके लिए प्रश्न ये हो एक नंबर में 43 ठो दुई में 44 तीन में 45 चार नंबर में 46 ठो खेल 45 ठो देश सहभागी हो कौन सी कहल गए?
1: एक नंबर
0: में 43 44 45 46 तो रहा 43 कहल दे अपने। हाँ, सेप्टेम्बर 19 तारीख से अक्टूबर 4 तारीख तक संचालन हुई विश्व एसियाली खेलकूद जौन जापान में संचालन होके वाला बाटे। नेपाल भी हमें सहभागी जना रहल बाटे। नेपाल 22 ठो खेल में खेली सहभागिता जनाई, लेकिन कुल खेल कितना बाकी के प्रश्न रहल, एकर सही जवाब हो 43 ठो खेल। एकदम सही जवाब हो आपके दियल। कार्यक्रम से छुटल जाना। नमस्ते। महेंद्र राय हमन के रूपंदेही से फोन कैले रहना। चार जना से बातचीत भैली, एक जना से और बातचीत हमन के कैल जा, ओकर बाद हमन के एठो गाना सुनल जाए। नेपाल 22 खेल में सहभागिता जना रहल बाटे। 22 खेल 43 खेल ते टोटल हो, लेकिन 22 खेल में सहभागिता जनाई। 22 खेल खेले के खातिर नेपाल से 136 जना खिलाड़ी लोगन छनौट भैल बाड़े। फोन संपर्क में कौन सा एरिया बाड़े फिर से। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, आवाज थोड़ा से कम आ गई मन के। अर्जुन थापा जी के आवाज लगल? अर्जुन थापा जी के आवाज लगल। और तीज के हाल चाल का बाट अर्जुन थापा जी? रमाइलो घमाइलो, मौसम भी अच्छा बा नहीं। खास के नेपाली महिला लोगन के महान त्यौहार हरितालिका तीज हो के रे। खासे पुरुष लोगन में तो उतना रौनक नहीं छैले रहल, फिर भी ठीके बा कहे पड़ल नहीं, कहे कि महिला लोगन के सपोर्ट भी तो करे के पड़ल। तमाम जना महिला लोग सुनी एक हल्लो बा कहल जी, तो फिर महिला लोग कहीं कस्तो मानसे वाला नहीं। एक लिए समग्र में अच्छा बाटे ले ठीक बा। और कार्यक्रम में रही कि आपके लिए हम एक प्रश्न रखत बड़ी, जवाब दिया जी अपने। एकदम प्रयास कैल जाइल। NSJF पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2082 के महिला तरफ उत्कृष्ट वर्ष खिलाड़ी के घोषित भैल बाड़िन। महिला तरफ आपके जवाब दिए के परी पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2082 के महिला तरफ उत्कृष्ट वर्ष खिलाड़ी के घोषित भैल बाड़िन। एक नंबर में एरिना श्रेष्ठ, दुई नंबर में सविता मगर, तीन में पूनम श्रेष्ठ, चार में एरिका गुरुंग। पुरुष तरफ चंद्रबहादुर थापा बॉक्सिंग के खिलाड़ी होना मन के पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2082 तरफ पुरुष और उत्कृष्ट वर्ष खिलाड़ी घोषित भैल रहना। तो महिला तरफ के बनल गई कि आपके लिए प्रश्न हो, एरिका श्रेष्ठ, सविता मगर, पूनम श्रेष्ठ, एरिका गुरुंग। ल अर्जुन थापा जी के बताए के पड़ल 100 रुपया के यमें सवाल बह में। दुई नंबर सविता मगर पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2082 के महिला तरफ उत्कृष्ट वर्ष खिलाड़ी एरिका गुरुंग कराते तरफ से मन के छनौट भैल रहन। एरिका गुरुंग एकर सही जवाब हो, चार नंबर ऑप्शन। कार्यक्रम से छुटल जाए। नमस्ते। एक छीन अब आप सबके मन के सहभागिता नहीं लिया जाए, कहें कि मन के विज्ञापन के समय हो चुकल बाटे, वही के मारे मन के फोन के एक छीन होल्ड में मन के ऐसे रखल दी नहीं। छोट के ब्रेक ले जी, ब्रेक ले से पहले मन के तो गाना सुनल जाए, गाना सुनल जाए और एक छीन गीत गुनगुनाई। गीत गुनगुनाने के बाद में छोट के ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से लौट के आवल जाए।

0: कुछ देर के छोड़ के व्यवसायिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत बटे कार्यक्रम गीत बहार में। और गीत बहार के आज सोमवार के दिन में बाड़ी जा, सोमवार के दिन हमन के खास के सवाल के जवाब लिया जला, तमाम विषय वस्तु संबंधी हमन के प्रश्न रहेला, प्रश्न के चार ठो ऑप्शन हमन के दिया जला जवाब के रूप में रहेला। जौन चार ठो ऑप्शन में हेलो नमस्कार,
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, कहाँ से के बोला जाता? बहुत अच्छा गाना गावत रही, शुभ नाम बोल दिया जाता
1: है
0: उपासना घिसिंग, कितना बढ़िया गाना गावत रही जगह, ओकर लिए धन्यवाद बाटे। ल ठीक बा, हमन के उपासना जी के खान पीन हो गई, कहे कि टाइम बहुत ज्यादा हो गई नहीं, अब 11:30 बज गए, चल जा ठीक बा, एकदम धन्यवाद बाटे। और कार्यक्रम में फोन कल गए सर राय और के हाल खबर भी ठीक ठाक हुई, मौसम कैसन बाटे उपासना जी? मौसम अच्छा बा, आज तो हरिताली का तीज, तीज में सुनावल जाता दिन कैसे बीता था? मादल बोकेर नहीं, नाच गान, चेली बेटी दीदी बहन लोगन बीच भेट मुलाकात के अवसर भी नहीं, ल एकदम धन्यवाद बाटे। और कार्यक्रम में रही कि हम आपके खातिर एक प्रश्न रखा तड़ी अपने जवाब दिया जाए, आपके लिए प्रश्न बाटे, नेपाल में कौन हिमाल के आधार मानी के प्रमाणिक समय निर्धारण भइल बाटे? नेपाल के समय जोन बा कौन हिमाल के आधार मानी के समय निर्धारण भइल बाटे, कहीं की प्रश्न आपके लिए। एक नंबर में गौरी शंकर हिमाल, दुई नंबर में मनासलू हिमाल, तीन में माछा पुछरे हिमाल, चार नंबर में जुगल हिमाल। नेपाल में कौन हिमाल के आधार मानी के प्रमाणिक समय निर्धारण भइल बा? ऑप्शन गौरी शंकर हिमाल, मनासलु हिमाल, माछा पुछरे, जुगल हिमाल, कौन हिमाल हो?
1: ऑप्शन सी रख दिनु ना,
0: ऑप्शन सी माछा पुछरे हिमाल,
1: अब आए ना त्यही रख दिनु
0: ना, आए ना अनुमान माछा पुछरे हिमाल नै। 2042 साल वैशाख 1 गते से नेपाल में गौरी शंकर हिमाल के आधार मानी के प्रमाणिक समय निर्धारण भइल बाटे, एकर सही जवाब गौरी शंकर हिमाल हो, छुटल जा नमस्ते। उपासना घिसिंग जी के फोन आइल रहल, हमन के सरलाही से फोन कैले रहलें, समय समय में बातचीत करे के अवसर यहाँ से भी मिलला। पल्हा आपके हो, आप भी फोन डायल करल जी, कहें कि समय जम्मा 1 घंटा के समय हो, जौन 11 बजे से 12 बजे तक हर रोज ठीक है ये समय।

0: जवाब दिएलजी, नेपाली इतिहास के पहिला संविधान कौन प्रधानमन्त्रीको पालामा निर्माण भइल रहल? नेपालको इतिहासमा पहिला संविधान कौन प्रधानमन्त्रीको पालामा निर्माण भइल रहल? एक नम्बरमा पदम शमशेर, दुई नम्बरमा मोहन शमशेर, तिन नम्बरमा भीम शमशेर, चार नम्बरमा भीमसेन थापा। अप्सन फिर एक बेर, प्रश्न बुझल गेल, नेपाली इतिहासमे पहिला संविधान कौन प्रधानमन्त्रीको पालामा निर्माण भइल रहल? 2004 सालमे पहिला संविधान नेपालमे जारी भइल रहल, कौन प्रधानमन्त्रीको पालामा हो? एक नम्बरमे पदम शमशेर, दुई नम्बरमे मोहन शमशेर, तिन नम्बरमे भीम शमशेर, चार नम्बरमे भीमसेन थापा। मोहन शमशेर नेपालके इतिहासमे सबसे पहिला संविधान पदम शमशेरके पालामे निर्माण भइल रहल। एकर सही जवाब पदम शमशेर हो। कार्यक्रमसँग सुटल जा, नमस्ते। हमनके नवीन खड्का धादिङसँग फोन कैले रहल, सात जनासँग बातचित कैली जा, सात जनामे से चार जनाके दिहल जवाब सही बाटे, शुरूसँग चार जनाके दिहल जवाब सही बाटे, ओकर बाद तीन जनाके दिहल जवाब सही बा। फोन सम्पर्कमे कोनो सङ्गरी बाँडे फिर से यहाँके जवाब ले लिहाल जा। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, राजु काबरा व्यक्त करते हैं।
0: हाल चाल का बाटे राजु काबरा जी? गर्मी लग गई भी नहीं है, भी नहीं है।
1: थोड़ा
0: गर्मी तेरी कहती गर्मी में आज तीज हो, फिर तीज में फिर गरम गरम जिलेबी गर्मी में कैसी पची था फिर? कहे कि मेला मौसम में आदमी जाना तो खांसी के जिलेबी खोजे लगाना ढेर आदमी का केना केना। तो अब तो आजकल तो समय में का हो गया कि अच्छा अच्छा दूध के परिकार नहीं शुद्ध एकदम मन के बर्फी के आइटम जोन कहल जाला नहीं, खोआ हुआ ढेर मिले लगल, तो आदमी लोगों के झुकाव ढेर फिर खोआ और चल गई बाटे का। लेकिन जिलेबी और के जोन पहले जोन आदमी लोगों के भीड़ भाड़ होत रहल, उ क्रम हमन के हाट बाजार में भी देखे सकल जे। एकर मतलब ये ना हो कि जिलेबी के मार्केट घटल बाटे, जिलेबी के मार्केट भी वैसे बाटे, लेकिन मेला मौसम में जइए तो आदमी का खाइए, चटपट खाइए, चाउमीन खाइए, फुल्की खाइए, चाट खाइए नहीं, घर आइए तो जिलेबी मिठाई बर्फी वर्फी लेके आइए नहीं, और मेला में जइए तो आदमी घूमे के तो हो देखे के हो नहीं, अब तमाम आदमी लोगों के भीड़ भाड़ के बेर रहा नहीं। चल जा ठीक बल्ले, हम राजू काबरा जी के खातिर एठो प्रश्न रखत बानी, नेपाल में कोनो भी गैर कानूनी काम हुई, कोनो भी कितनो भड़क हत्या के घटना अगर काहे ने हो जा, लेकिन नेपाल में फांसी दिए वाला सजाए नेपाल के कानून में अभी तक नहीं बा, नहीं बा नहीं ले। लेकिन प्रश्न का बाटे, विश्व इतिहास में फांसीवाद व्यवस्था के शुरुआत कौन देश से भइल रहल? आपके लिए प्रश्न ये हो, नेपाल में फांसी दे के नहीं मिली, लेकिन विश्व के इतिहास में अगर हमन के देखल जाए तो फांसीवाद व्यवस्था के शुरुआत कौन देश से भइल बाटे? एक नंबर में जर्मन, दुई नंबर में इटाली, तीन नंबर में अमेरिका, चार नंबर में जापान। तीन नंबर में अमेरिका। अमेरिका सही जवाब दे दिए अपने। आपके जवाब अमेरिका हो कि का हो? जर्मनी, इटाली, अमेरिका, जापान।
1: अमेरिका।
0: हाँ, बड़ा लम्बा सांस लिए पर के। ठीक बात, आपके दिहल जवाब अमेरिका सही जवाब नहीं हो, सबसे पहले शुरुआत भइल देश काल के इटली हो, फांसीवादी व्यवस्था के शुरुआत सबसे पहले इटली से भइल रहल, आपके मालूम रहे। छूटल जा, नमस्ते। राजू काबरा विराटनगर से फोन कैले रहल, आठ जना से बातचीत हो गई बाटे, इनकर जवाब भी गलत रहल नहीं, चार जना के शुरू में सही रहल, चार जना के गलत बा, अब जाके चार जना के सही आ गई के हम आशा करत बाड़ी। देखल ना फोन आप भी डायल करत बाड़ी जात, एक छिन के बाद में फोन करल जी, कहें कि घंटी बज गई बाटे नहीं, फोन कल जाइए तो दोबारा कल जाइए तो फिर यार आवाज़ आए लगी डिस्टर्ब हुई, वही के मारे एक छिन फोन डायल ना करल जाए। फोन संपर्क में कौन सा एरिया बाड़े? हेलो नमस्कार।
2: नमस्ते,
0: शुभ दिन, नमस्कार, जय राम जी के, तीज के ढेर ढेर शुभकामना। श्री राम दाल जी, हाल चाल का
2: बाटे? एकदम राम्रो छ, अब मौसम हल्का हल्का शीतलता तिर जाँदैछ हैन,
0: शीतलता जात बाटे, मनके भक्तपुर से फोन कैल गेल, और आज सार्वजनिक विदा भी हो नहीं, कहें कि नारी लोगन के महान त्यौहार हरितालिका तीज देश भर धूमधाम तरीका से सब केहू मनावल जात बा नहीं।
2: हजुर, हमरा जीवन में अब है ना भाउजू बुहारी दीदी बहनी आमा अरूको मान चाड

0: लगायत हाम्रो पनि मान चाडै भन्नुपर्छ,
1: एकदम
0: हरितालिका तिज मनाइरहनु भएको छ, रमाइलो भएको छ भन्नुपर्छ है।
1: ल ठिक बाटे, अरू कार्यक्रममै सिधै प्रश्न हो जाइलेमनकै, ठिक बा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार महानगरपालिका होखे खातिर कम्तीमे केतना बासिन्दा आवश्यक रहल बाटे, जनसङ्ख्या केतना होखे के परी, खासैके प्रश्न हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार महानगरपालिका होखे के खातिर केतना जनसङ्ख्या आवश्यक बाटे, एक नम्बरमे 5 लाख, दुई नम्बरमे 4 लाख, तिन नम्बरमे 3 लाख, चार नम्बरमे 2 लाख, 5, 4, 3, 2 केतना लाख हो?
0: 5, 4, 3, 2
1: ल प्रयास गरल जा, प्रयास प्रयास कैली तब जाके मालूम चले।
0: ठीक छ, अब महानगर कि नगर,
1: महानगरपालिका,
0: महानगर 5 लाख,
1: काठमाडौँ महानगरपालिका नै,
0: हजुर 5 लाख,
1: 5 लाख काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, दरिया दरिया बाढी जाकेर थोरै आसान जरुर भइल है, हो अमन कि एकर सही जवाफ 5 लाख, एकदम सही जवाफ हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार महानगरपालिका हुके खातिर कम्तीमे 5 लाख जनसङ्ख्या आवश्यक बाटे, आपके दिएल जवाफ एकदम सही बा, छुटल जा, नमस्ते। अब गीत बजाएके समय हो गेल बाटे हमन के, उसे पहिले हम मॉडर्न टेलर के समझेके साथ बड़ी फोन एक छिन आपके हमन के ना लिहल जाइ, काहे कि गीत बजावल जाइ, गीत बजेले के बाद ब्रेक के समय हो। हमन के मॉडर्न टेलर एंड सटिंग शूटिंग जोन राम ग्राम 5 परासी घंटाघर चौक में अवस्थित बाटे। घंटाघर चौक से अगर जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय तरफ अगर पछु ओर जाइल जाइ, हमन के घंटाघर जोन चौक बाटे उ चौराहा से अगर 10 कदम आगे जाइल जाइ तो रास्ता के दक्षिण साइड में देखे सकल जाइ मॉडर्न टेलर एंड सटिंग शूटिंग बाटे। वहाँ जाइल जाइ लेडीज एंड जेंट्स स्कूल कॉलेज कोनो भी किसिम के कोट पैंट अथवा ड्रेस सियाए के होई, साथ में अब तरतीभार के समय भी एकदम आगे बाटे नहीं, तरतीभार के समय में खूब अच्छा अच्छा ड्रेस सिया के अच्छा अच्छा कपड़ा पहरे के साथ हो, कपड़ा और सिलाई के दाम एक जगह होला, यहाँ नाते मॉडर्न टेलर एंड सटिंग शूटिंग सेंटर के जरूर समझल जाइ। अठो गाना बजाए के समय भी हो गए बाटे, गीत सुनल जी, एक छिन ब्रेक रही, ब्रेक के बाद फिर से आवल जाइए।

0: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
0: इतने भर नहीं सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
2: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटा घर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737।
3: जता दौडिए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन रेट पनि त्यस्तै महँगो
2: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन
4: हजुर सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम
3: हामी कहाँ छड सिमेन्ट गिट्टी बालुवा रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ सेनेटरी प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर
4: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली रामग्राम 3 परासी सुनोवल रोड पुरानो सिनेमा हलको अगाडि फोन 0785208081
3: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ सम्पर्क फोन 0785905088
5: सुनत बाड़ा हो के जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
6: तेरी का हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
7: भाई देखा तू सब के ही कुल समस्या बाते एक बेर विगत लम्बा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला
2: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कह के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार
0: समय में आँख जाँच करावल जा और आनहर भइले से बचल जा नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी फोन 0785201046 और 0785210033
8: अब तपाईको टोयलेट जाम भयो वा भरियो भनेर तपाई भौतारिनु पर्दैन मात्र एक कल फोन रामवचन सेनेटरीलाई गर्नु भयो भने हामी तुरन्त आइहाल्छौ
9: हाम्रा सेवाहरू
10: अत्याधुनिक भ्याकुम क्लीनर मेसिन द्वारा गन्ध रहित तरिकाले सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिने
9: विद्युत नभएमा पनि जेनेरेटरबाट काम गरिने
10: थप जानकारीका लागि सम्पर्क रामवचन सेनेटरी रामग्राम 1 परासी
11: सम्पर्क मोबाइल 9806970482 9800705713 र 9864995513
12: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो
13: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी चिनवे छावे के लेकिन
12: का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेगा एक बार जाके तो देखी
14: जी हाँ पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला
15: संपर्क खातिर
14: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान मोबाइल 9834768733 और 9814960630
15: नवल परासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।

0: अन्तिम छोटके व्यावसायिक विश्रामके बाद फिरसे स्वागत बाटे कार्यक्रम गीत बहारमे। आओर कार्यक्रम गीत बहारके हमनके आज सोमवारके दिनमे बाढी जा सवालके जवाब लिएके दौरानमे 9 जनीसे बातचित भइल बाटे। एक घन्टाके समय हो, 11 बजेसे 12 बजे तक हर रोज ठिक्क यही समयमे उपस्थित होखल जाला कार्यक्रममे। आज हमनके सोमवारके दिन तमाम जनीसे बातचित करेके क्रममे बाढी जा आओर फोन सम्पर्कमे कोनो सरिया बाँडे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोला जाता? ऋषि राम पांडे जी के फोन आ गई। और हाल खबर ठीक ठाक बा ऋषि राम पांडे जी? ठीक ठाक बा एकदम। मौसम घमाइलो रमाइलो बा के रे, वहार कैसन बा प्यूठान? और घमाइलो रमाइलो सब बा नहीं, कहे कि आज विशेष दिन, आज तीज पर्व भी हो मन के, हरितालिका तीज, आइए नाते भी रमाइलो होखे के पड़ल। और कार्यक्रम में रही कि हमन के ऋषि राम पांडे जी के खातिर एठो प्रश्न रखत बाड़ी, अपने ध्यान दे के सुनल जला। नेपाली इतिहास में सिद्धि नरसिंह मल्ल कौन मुद्रा के प्रचलन में ल्याले रहले? नेपाली इतिहास में सिद्धि नरसिंह मल्ल कौन मुद्रा के प्रचलन में ल्याले रहले? एक नंबर तामा के मुद्रा, दुई नंबर में सुन के मुद्रा, तीन नंबर में चांदी के मुद्रा, चार नंबर में छाला के मुद्रा। छाला के मुद्रा, सिद्धि नरसिंह मल्ल छाला के मुद्रा प्रचलन में लाइल रहले। एकदम कन्फर्म हो ऋषि राम पांडे जी?
1: कन्फर्म हो
0: ला। आपके दियल जवाब एकदम सही बाटे, छाला के मुद्रा प्रचलन में लौले रहले सिद्धि नरसिंह मल्ल। कार्यक्रम से छूटल दे, नमस्ते। ऐसे ढुक्के होके जवाब दिया जाए तो कितना मजा, सुने वाला आदमी लोगों के मन में भी एकदम ढुक्के आत्मविश्वास बढ़ल हो नहीं, कहें कि इतना आसान आसान सहज सहज प्रश्न पूछत माने ये जवाब तो हमके भी मालूम रहा। तो वही के मारे फोन कर ले, हरेक सवाल सहज रहेला, सहज के और सहज बनाए वाला माध्यम हमन के लग चार ठो ऑप्शन रहला। तो वही के मारे खासे परेशानी तो कौन चीज बात है, फोन संपर्क में कौन सा एरिया माने फिर से। हेलो नमस्कार। नमस्ते, एकदम आराम ही, एकदम जानल पहचानल आवाज हो हमन के। देवेंद्र सापकोटा चितवन, हमन के छिमेकी एकदम चितवन भरतपुर, पहिला पूर्वी पश्चिम नवलप्रासी एक होती दाइन, हमन के छिमेकी जिला चितवन रहल नै। आज भी हमन के पड़ोसी जिला के रूप में लेल जी, नवलप्रासी नवलप्रासी चितवन पड़ोसी जिला स्वतः हो गेल। ठीक बा, फिर भी पूर्वी पश्चिमी भए पनि नवलप्रासी ते नवलप्रासी। एकदम हमन के देवेंद्र सापकोटा जी के खान पीन भी हो गए, कहे कि अब 12 बजे लगल करीब हम के खान पीन एकदम हो गए बाटे। और कार्यक्रम में रही के एक प्रश्न के जवाब दिए पड़ल, कहे कि आपके भी मालूम बाटे, प्रश्न रखत बाड़ी अपने जवाब दिए के प्रयास कर ला। नेपाल हाल साल सार्वजनिक कैल नया राष्ट्रीय निकुंज कौन हो? पछिल्ला समयमे नेपाल राष्ट्रिय निकुञ्ज हालसाल एठो सार्वजनिक कैले बाटे, ऊ राष्ट्रिय निकुञ्ज के नाम का हो? एक नंबर में मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई में महाकुलुंग राष्ट्रिय निकुञ्ज, तीन में छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज, चार नंबर में पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। ऑप्शन कितना? ऑप्शन दुई, महाकुलुंग राष्ट्रिय निकुञ्ज। 2082 भदौ 13 गते निर्णय भइल रहल छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज 13 कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज के रूप में हाल सालै सार्वजनिक भइल बाटे। सही जवाब छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। छुटल जा, नमस्ते। हमन के मुगु जिला में अवस्थित बाटे, इससे पहले 12 राष्ट्रीय निकुञ्ज रहल, जौन के हमन के छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज 13 स्थान में बाटे। ये सबसे कान्छो अथवा छोट हमन के राष्ट्रीय निकुञ्ज के रूप में छायानाथ राष्ट्रीय निकुञ्ज के हमन के लिए जे देवेंद्र सापकोटा चितवन से फोन कैले रहने। 12 नंबर में फोन संपर्क में कौन संग्रिया बाने? हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, नमस्ते नमस्कार,
2: नमस्ते नमस्ते।
0: हमार आवाज दुई बेर सुना गेल पूरन जी?
2: पूरन चौधरी सर।
0: हाँ पूरन चौधरी, तो पूरन चौधरी हमार बोली हम ही के सुना था किन का है कि रेडियो बजावल जाता है।
2: हेलो
0: हेलो पुरन चौधरी बकेनवा के संग्रिया माना पुरन जी सुनल जाता चलल जा ठीक बाटे ल आपके लिए हम प्रश्न रखत बाड़ी अपने जवाब दे दिया जी एकदम आसान प्रश्न बाटे कितना के सहज हुई आपके के जन ल नेपाल और भारत बीच गंडकी समझौता होत के दायन नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के रहलें गंडकी समझौता जब नेपाल में होत रहल नेपाल और भारत बीच तमन के नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के रहलें एक नंबर में मातृका प्रसाद कोइराला दुई में शेरबहादुर देउवा तीन नंबर में बीपी कोइराला चार में भीमसेन थापा प्रश्न नेपाल भारत बीच गंडकी समझौता होत के दायन नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के रहलें हाँ गंडकी समझौता तमाम समझौता भइल बाटे कोशी समझौता गंडकी समझौता सुगौली समझौता नै तो कौन सी कहल जाइ वार महाकाली समझौता समझौते समझौता वा का
2: प्रधानमंत्री के नाम बताए भने सर
0: हाँ प्रधानमंत्री के नाम बताए के
2: परी
0: नेपाल और भारत बीच गंडकी समझौता होत के दायन नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के रहने प्रश्न हो ऑप्शन एक में मातृका प्रसाद कोइराला दुई में शेरबहादुर देउवा तीन नंबर में बीपी कोइराला चार नंबर में भीमसेन थापा बीपी कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल और भारत बीच गंडकी समझौता होत के दायन कन्फ्युज बाढी जा हम कन्फर्म बना दी ल कोशी समझौता होत के दायन मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहलें महाकाली समझौता होत के दायन शेरबहादुर देउवा रहलें सुगौली सन्धि होत के दायन भीमसेन थापा रहलें ये नाते गंडकी समझौता होत के दायन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहलें आपके दिए जवाब एकदम सही बाटे छुटल जा नमस्ते अब हमन के आपसे बातचीत नहीं करल जी कहें कि हमन के समय एकदम अंतिम अंतिम और आ चुकल बाड़ी जी हमन के स्टूडियो के घड़ी में 11:57 हो गई बाटे लेकिन आपके फोन के रफ्तार नहीं टूटत बाड़े आप सबके एकदम दिल से धन्यवाद रही जे फोन के कार्यक्रम में साथ देत बाटे ये हमन के 12 जनी में से सही जवाब हमन के 7 जना दिले माने सही जवाब दिए वाला के नाम लेते बाड़े कृष्ण बलामी काठमांडू से सूर्य मिजार चितवन से ओमनाथ कंवर रमुआपुर से महेंद्र राय रूपंदेही से श्रीराम दहाल भक्तपुर से ऋषि राम पांडे प्यूठान से पूरन चौधरी नौलबरासी से यमन के 7 जना में से 1 जना विजेता के नाम लेकर आवा थी एक सुना जाए

हमनके 7 जना विजेता के लिस्ट में रहल है, 12 जना से बातचीत भइल 1 घंटा के समय अवधि भर। एमे से हमनके विजेता के नाम निकल गई बाटे, हमनके 100 रुपया के रिचार्ज कार्ड हमनके भेजल जाए। चितवन से फोन कैले रहल है सूर्य मिजार जी के बधाई बाटे, और सही जवाब दिए वाला तमाम श्रोता मित्र लोगन के भी धन्यवाद बाटे। फोन कैली जा आपके धन्यवाद, कार्यक्रम सुन के साथ दिली जा आप सबके भी धन्यवाद बाटे। पुरस्कार के व्यवस्था कई डाले मॉडर्न टेलर एंड शूटिंग के प्रोपराइटर शमशेर अंसारी जी के विशेष करके धन्यवाद रही। प्राविधिक मेरे के हमार आवाज आपके रेडियो सेट तक विलियम साथ दे डाले। प्राविधिक मित्र शंभु चौधरी और सुरेश जी के धन्यवाद दिए। कार्यक्रम गीत बहार से सुरेश यादव विदा होत बाड़ी। नमस्ते।

0: अहो है टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
1: है देखा अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
3: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
0: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559745836।
4: नमस्ते मनोहरी प्रेमी, मेरो रेडियो तपाईको रेडियो अनि हामी सबैको रेडियो, रेडियो फरासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
1: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा ऐन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
2: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
3: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
0: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0785906699 र मोबाइल 98577427282।
4: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
5: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
4: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी, यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला, एक बार जाके तो देखी।
6: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कैल जाला।
7: संपर्क खातिर
6: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान, मोबाइल 9834768730 और 9914960630।
8: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी,
9: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजिंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
8: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
10: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 9861745737।
11: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डीजल लगायत का अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाईपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 9857023031।
12: जो कोई को इच्छा सुन्दर घर को लागि सुन्दर रंग,
13: तपाईको घरलाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इन्डिगो पेंट्स।
12: इन्डिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कन्सर्न, कलर हाउस।

0: जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप्प लाइन जान्छ। एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
1: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो। त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, के को चिन्ता?
2: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
1: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौँ।
3: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामगराम 5 परासी थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटर को ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 9815640092 र 9828336460।
4: ओ माय गॉड, इते अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगा ता फिर पड़क गईल।
5: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिते सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
6: जी, हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
7: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठुठीवारी। प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त। व्हाट्सएप नंबर 9918510981।
8: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़-मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूं जहूं के मन नहीं करला।
5: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहां विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
9: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
10: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरे 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निशुल्क इलाज।
8: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठीबारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559574700 और 9559544536।
11: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए
12: के
11: चाहिए।
12: सही कहला हो, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
9: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कर जा सफेद सर्फ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
11: सफेद वाशिंग पाउडर 0.5 kg से लेके 1, 2, 3, 4 kg तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 kg सर्फ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
12: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
9: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम को जरूरी सूचना।
13: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूप में बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरुको हकमा यही चैत्र मसान्त सम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधन मा लाग्ने कुल जरिवाना को 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कूटी को लाइसेंस पनि वितरण गरिन्छ।
9: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।

0: सस्तो र राम्रो सामान पाइन्छ।
1: हो, हामी कहाँ निर्माण सम्बन्धी छड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, एङ्गल पत्ती, पाइप, एचआर सिट तथा मूर्तिहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
2: एक पटक आएर त हेर्नुहोस्।
1: न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेज, रामग्राम 5, परासी, बाइपास रोड, नापी कार्यालयको ठिक अगाडि। सम्पर्क 9845-59960 र 9118-21559।
3: अब इलेक्ट्रिक स्कुटरको शोरूम परासीमै।
4: तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी परासीमा वातावरण मैत्री दुई पाङ्रे इलेक्ट्रिक स्कुटरको सोरुम खुलेको छ। स्कुटर खरिद गरी अब पेट्रोल भर्ने र सर्भिसिङ गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस्।
3: साथै एक पटक चार्ज गरेपछि 100 किलोमिटर सम्म मजाले चढ्नुहोस्, त्यो पनि 70 किलोमिटर प्रति घन्टा सम्मको स्पिडमा।
4: थप जानकारीका लागि गीता अटोमोबाइल, रामग्राम 5 बाइपास रोड, हाट बजार नजिक परासी। सम्पर्क मोबाइल 9857046865 र 9069658118।
3: अब दायाँ बायाँ हैन, इलेक्ट्रिक स्कुटर नै रोजौं।
5: ए चाचा, देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गइल बा का हो, हमके त एकदम धुधुरा लौकत।
6: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा, आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गइल बाड़ी।
7: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा। अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
1: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मास उभरल टेढ़मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
5: संपर्क भगवती नेत्रालय, रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड, आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 9867288015 और 9857022215।
8: ए बाबु, अँध्यारो छ, टर्च बालेर जाऊ।
9: आ, पर्दैन आमा, त्यहीँ पुग्ने त हो, एकैछिन त हो नि, म पुगेर आइहाल्छु के।
8: बर्खाको बेला छ, अँध्यारोमा हिँड्दा सर्पले टोक्न सक्छ। उज्यालो बालेर जुत्ता अझ भए बुट लगाएर हिँड्नु पर्ने, नत्र त सर्पले टोकिहाल्छ नि।
9: अँ है, बल्ल सम्झे, सर्पको टुकाइबाट बस्न त खेतबारी र झाडीमा जाँदा गमबुट लगाउने, सुत्नु अघि ओछ्यान टकटक्याउने र झुला हालेर मात्रै सुत्ने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर मिसले भन्नुभएको थियो।
8: अनि सर्पको टोकाइबाट जोगिन घर वरिपरि सफा राख्ने, घाँस पराल र दाउरा झिक्न जाँदा सचेत हुने भनेर मिसले भन्नुभएन?
9: भन्नुभयो नि, मिसले त घर वरिपरि दुलोहरू पुर्ने र ताल तलैया नदीनालामा विषालु सर्प हुन सक्ने भएकोले नजाने पनि भन्नुभएको थियो।
8: हो, सावधानी अपनाउँदा सर्पको टोकाइबाट बस्न सकिन्छ, सानो लापरवाहीले ज्यान जान सक्छ।
10: सतर्कता अपनाउने गरौं, सुरक्षित बनौं।
11: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
12: नमस्कार, म लोकदोरी गायिका

0: मैया ए मैया
1: हजुर के भो
0: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
2: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
3: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
4: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर नेसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
3: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9893231351
1: जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप्प लाइन जान्छ एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा
0: ठिकै भन्यौ अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि के को चिन्ता
5: हजुर जहाँ तपाईँले गिजर हिटर इन्भर्टर आइरन राइस कुकर पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वायरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ
0: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौँ
3: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर रामगराम 5 परासी थाना रोड ग्लोबल कम्प्युटरको ठिक अगाडि प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता मोबाइल 9815640092 र 9283364060
6: जता दौडिए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन रेट पनि त्यस्तै महँगो
7: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन
8: हजुर सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम
6: हामी कहाँ छड सिमेन्ट गिट्टी बालुवा रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट इन्डोर ब्रान्डका बाथरुम फिटिङ सेनेटरी प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर
8: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड पुरानो सिनेमा हलको अगाडि फोन 078-520-881
6: साथै हाम्रो शाखा सुनवल 12 भूमैमा पनि छ सम्पर्क फोन 078-590-588
9: हत्तेरीका लास्ट गर्मी लगत यार लगत बिना फ्रिज या कुलर के नै रह सकै यहीमा मोबाइल फुट गेल बा लेकिन
7: का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता
10: जी हां धीरज ट्रेडर्स परासी में हरेक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी फ्रिज कूलर पंखा एसी हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला
11: संपर्क धीरज ट्रेडर्स रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल मोबाइल 9847-22020 और 9815-22020
12: सुनत बाड़ा हो किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गेल बा का
11: हतेरी का हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
13: भाई देखा तू सब के ही कुल समस्या बाते एक बेर विगत लम्बा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला
7: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कह के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार
9: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँख अस्पताल परासी फोन 078-520-146 और 078-521-033 परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी
10: चौबीसों घंटा इमरजेंसी सेवा देहता ईसा साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मेसिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
9: इतने भर नहीं सब साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
7: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737।
14: बस ट्रक कार होस् वा मोटर बाइक टायर सधैं सेट कै
15: हजुर जय कालिका ट्रेडिंग एंड सप्लायर्स भूमहिमा बलियो टिकाऊ अनि बड़ी माइलेज भएको सीएट टायर इन्भर्टर बैटरी साथै आकर्षक सटिंग सुटिंग का लागि पनि एकै

0: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वॉशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
1: सही कहला हो, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनौले के साथ सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
2: जी हाँ, चाहे वॉशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सर्फ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गांव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
0: पुनश्च सफेद वॉशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
1: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत, संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
3: हद तेरी का लास्ट गर्मी लगता यार, लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सका, यही में मोबाइलो फूट गई बा। लेकिन
2: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स पर आसी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
4: जी हाँ, धीरज ट्रेडर्स परासी में हर एक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी फ्रिज कूलर पंखा एसी हीटर लगा के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
5: संपर्क धीरज ट्रेडर्स, रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 98 470 22 020 और 98 015 22 020।
6: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डीजल लगायत का अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाईपास रोड हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98 570 23 031।
7: डेंगु रोगबाट बस्नका लागि सर्वसाधारणमा अनुरोध। डेंगु रोगको महामारी धेरै जसो ठाउँमा प्रकोपको रूपमा फैलदै गएकोले यसको लक्षण देखिना साथ स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराइहालौ। लक्षणहरू उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी वा मांसपेशीमा अत्याधिक दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, गिजा नाक मुखबाट रगत बग्नु, शरीर चिलाउने आदि।
8: डेंगु रोगबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्ने, पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुल भित्र सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने गरी जाली लगाउने, घर आँगन र वरपरको सफाई गर्ने, पानी जम्ने भाँडाहरू, टिन खाली बट्टा, गमला, फुलदानी, टायर आदिमा पानी जम्न नदिने, गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको 2 पटक फेर्ने, घर वरपर रहेका पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्ने र ढल पोखरी लगायत धेरै पानी जमेको ठाउँमा जलेको मोबिल वा मट्टी तेल हाल्ने गर्नु पर्दछ। थप जानकारीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासी।
9: ए लौ न लौ लौ, चट्याङ पर्न आटो, सबैजना यता आओ त, यता यो ठुलो रुखको फेदमा बसौ।
10: हुन्न हुन्न, चट्याङ पर्दा रुखको फेदमा बस्नु हुँदैन, त्यहाँ त झन् जोखिम हुन्छ।
11: हो र?
10: हो नि, चट्याङ पर्दा रुख मुनि र बिजुलीको खम्बा वा अग्लो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, सुक्खा ठाउँ र घरभित्र झ्याल ढोका लगाएर बस्नुपर्छ।
11: अनि चट्याङबाट जोगिन अरू के गर्नुपर्छ?
10: चट्याङ पर्दा वा पर्ने सम्भावना हुँदा टेलिभिजन, फ्रिज, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, माइक्रोओभन जस्ता विद्युतीय सामग्रीमा जोडेको तारको स्विच बन्द गर्नुपर्छ। यदि विद्युत बन्द गरिएन भने चट्याङ पर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।
11: चट्याङ पर्ने जोखिम कुन कुन समयमा बढी हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न।
10: धेरै जसो चट्याङ चैतदेखि जेठ महिनामा र सामान्यतय दिउँसो 3 बजेपछि बढी पर्ने सम्भावना हुनाले यो समयमा सचेत रहनुपर्छ।
12: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
13: सुनत बाड़ा हो, किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
14: हतेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता, अदानी को साफ से नाय फरियाता।
15: भाई देखा, तू सब के ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
2: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
3: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल अस्पताल परासी। फोन 0785-20-146 और 0785-21-033।
16: ये चाचा देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गई बा का हो, हमके तो एकदम धुधुराह लौका था।
3: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, यही हाल तो हमरो बा। आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गई बाड़ी।
17: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा। अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
18: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मांस उभरल, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के, कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
2: संपर्क भगवती नेत्रालय, रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड, आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 98672-28015 और 98572-22-15।
19: नमस्कार, म लोक गायक वैकुण्ठ महत, तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो परासी 90.2 MHz।

0: हेलो, हेमलक ट्राभल्स हो?
1: हो हजुर।
0: सुन्नु न, एउटा दुबईको प्लेन टिकट चाहिएको थियो, अनि भैरवा टु काठमाडौँको लागि दुईवटा टिकट पनि
1: भइहाल्छ।
2: हजुर, हेमलक इन्टरनेशनल टुर एन्ड ट्राभल्स भुमैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट, अनलाइन श्रम स्वीकृति, टिकट कन्फर्म, टुर प्याकेज, होटल बुकिङ, भिजा सर्भिस, अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै स्कर्पियो, जीप, कार भाडामा चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्।
1: सुन्नुहोस् त, टिकटको मिति सार्नु परेमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। हेमलक इन्टरनेशनल टुर एन्ड ट्राभल्स, सुनोल बार भुमई, म्यानेजिङ डाइरेक्टर भोला पराजुली, फोन नम्बर 0878415001 र मोबाइल 98570045546।
2: हेमलक, तपाईँको यात्राको विश्वासिलो सारथी। के तपाईँ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
3: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
2: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पुरा गर्दैछौ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटिएस, पिटी र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबिबिएस, बिडिएस, एमडी, एमएस, एमडिएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु।
3: थप जानकारीका लागि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, रामग्राम 5 परासी अदालतको ठिक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 98510-38135।
0: ल, बिहेको अरू तयारी त भयो, अब गर गहना।
4: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है
5: बाबा। बाबा, गहना त ढकाल ज्वेलर्स भुमैबाटै बनाउनु पर्छ है। अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको, कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
2: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्ष कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचाँदीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्। साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
3: सुनचाँदीका गरगहनाका लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स, सुनोल बार भुमही, प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल, सम्पर्क 98677-80632, 98075-92211 र 98495-71979।
6: हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
7: लौ हरे कृष्ण जप्दै कता हिँड्नु भयो बुवा?
6: ए बाबु, नातिको दाँत दुखेर हरे कृष्ण डेन्टलतिर हिँडेको। मैले यही दाँतको समस्याले कति दुःख पाएँ, अब हरे कृष्णमा जाने बित्तिकै ट्वाक्कै ठिक भयो। त्यही भएर नातिलाई पनि लिएर हिँडेको।
2: हो, अब सबैले भन्छन् हरे कृष्ण। हामी कहाँ अत्याधुनिक मेसिनद्वारा दाँतको चेक जाँच गरी बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई सिधा बनाउने, आरसिटी, डेन्टल इम्प्लान्ट, दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, दाँतको सफाई लगायत दाँत सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
8: पुनश्च डाक्टर विकास ढुङ्गाना र सन्जु बस्याल सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दाँत, मुख तथा गिजाको उपचारमा 25% छुटको व्यवस्था छ।
1: थप जानकारीका लागि हरे कृष्ण डेन्टल प्राली, रामग्राम 3 परासी बुद्ध चोक, एभरग्रिन हस्पिटल परिसरमा, निर्देशक श्याम कुमार बस्याल, 98510-38135।
9: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी,
10: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता है सत साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
9: इतने भर नहीं, सब साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
8: सम्पर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 9861745737।
11: जो कोई को इच्छा सुंदर घर को लागी सुंदर रंग
12: तपाईको घरलाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इन्डिगो पेन्ट्स।
11: इन्डिगो पेन्ट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी।
12: इन्डिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रंग रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
11: इन्डिगो पेन्ट्स सदा बसन्तम।
13: घरलाई कस्तो रंग सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
11: त्यति मात्रै कहाँ हो र हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
12: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
11: परासीमा घर रंगरोगन प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्य पाइने एकमात्र स्थान
5: सत्य भगवती ट्रेनिङ कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
13: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी, सम्पर्क 0785207747 र 9857046747।
14: अंकल नमस्कार, बहिनी बियाह कर दुबारा का?
15: हाँ बेटी, बिटिया सियान हो गई, अब समय में बियाह हो जाते।
14: नाई अंकल, पहले जैसन समय अब नाई रह गई, अब ते 20 वर्ष ने पुग के बियाह करे के और कराए के नाई मिले। कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे की पड़ी और उतना भर नाही छोटहन उम्र में बियाह कई देत के बहिनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हो।
15: ऐसन बात बाटे?
16: हाँ, हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल।
8: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिवाना होखेला। यह नाते अगर ऐसन गतिविधि होई तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रेणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।
17: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगाला, अब तनिको कहूँ जहूक मन नहीं कराला।
18: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो? चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
8: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा।
15: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1,000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी। दांत बनवाए के बाद 1,200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
17: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559745836।
19: नमस्ते, म नरहरि प्रेमी, मेरो रेडियो तपाईँको रेडियो अनि हामी सबैको रेडियो, रेडियो परासी 90.2 MHz।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी नया युग के समावेशी आवाज।
1: भोजपुरी हाल खबर
2: अपने गांव घर और आसपास की ताजा घटना की जानकारी के खातिर हर रोज जरूर सुनल जा।
1: भोजपुरी हाल खबर
2: मात्र रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज पे।

नमस्कार, पश्चिम नवलपरासीकै पहिला रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज और इन्टरनेट अनलाइनकै www.radioparasi.com मार्फत एकैसाथ प्रसारण हो रहल साँझीकै 5 बजेकै भोजपुरी हाल खबरमे हम सुरेश यादवके तरफसे आपके स्वागत बा। हाल खबर सुरु कइल जा खास खास खबर से। काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन प्रक्रिया आगे बढाएवाला संस्थापन इतर समूहकै निर्णय। एमाले पुनर्गठनकै खातिर सहमति गरेकै लिए 3 नेता लोगनकै जिम्मा। नेकपाकै महाधिवेशनकै खातिर बैठक बोलाएवाला तयारी। भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमे राहत तथा पुनर्स्थापनाकै खातिर बजेटकै अभाव नाइ देखे खातिर प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै कहनाम। यातायातकै क्षेत्रमे करिब 12.90 अर्ब करोडकै भौतिक क्षति। बाल बालिका लोगन के क्षेत्र में काम करे खातिर 3 तह के सरकार के समन्वय। बलात्कार, यौन हिंसा और साइबर बुलिंग अंत्य करे के खातिर संसद में संकल्प प्रस्ताव पेश। और भारत में जारी ब्रिक्स सम्मेलन में विश्व अर्थतंत्र और भू राजनीतिक तनाव के बीच सहकार्य के खोजी। पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत के सहज जीत। अफगानिस्तान 7 विकेट से पराजित। अब सुनल जा पूरा हाल खबर। नेपाली काङ्ग्रेसकै संस्थापन इतर समूह पार्टीकै 15 महाधिवेशन प्रक्रिया आफ्नै ढङ्गसे आगे बढाएवाला निर्णय कैलेबाट निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै निवास महाराजगञ्जमै आज बैसल समूहकै बैठक। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयकै निर्णयअनुसार महाधिवेशनमै भाग लिए नाइसकेवाला निष्कर्ष निकलेबाट। यसै पहिले संस्थापन पछिकै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिकै बैठक। 14 महाधिवेशनसे आयल सब केन्द्रीय सदस्य लोगनकै उहे हैसियतमै 15 महाधिवेशनमै भाग लिए दिएवाला निर्णय कैले रहल। संस्थापन इतर समूह अपने लोगन कौनो पदके खातिर नहोके पार्टीकै बचाएवाला अभियानमै आगे बढलेसे उमाकान्त चौधरी यसै पहिले प्रस्तुत कैल 15 महाधिवेशनकै कार्यतालिकाकै आगे बढाएवाला निर्णय भइल बाट। बैठकके बाद नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत संस्थापन पक्षकै निर्णयकै बारेमे अनौपचारिक छलफल भइल और आज औपचारिक धारणा तय होकेवाला बाट काङ्ग्रेसकै कार्य सम्पादन समितिकै बैठक। 15 महाधिवेशनमे भाग लिएके वा आयोजकके रूपमे सामेल होके चाहेवाला 14 महाधिवेशनसे निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य लोगनकै केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमै स्वागत कैके जिम्मेवारी दिएवाला निर्णय भइल बाटे। ऐसे संस्थापन इतर समूह आज आकस्मिक बैठक भी बोलाउलेबाट। बैठक सम्पर्क कार्यालय चुनदेवीमे बैठेवाला बाटे। यसबीच नेकपा एमाले पुनर्गठनकै सुझाव पेश गरे खातिर गठित कार्यदलमे सहमति नाइ भइलेके बाद 2 ठो प्रतिवेदनकै मिलाएवाला जिम्मा उपाध्यक्ष लोगन रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल और शङ्कर पोखरेलकै जिम्मा दिएल गेल बा। काभ्रेके बलथलीमे 3 दिन तक चलल आवासीय बैठकमे उपाध्यक्ष थापा और महासचिव पोखरेल ल्यावल अलग अलग प्रतिवेदनकै मिलाएवाला कोसिस भइल रहल, लेकिन दुनो प्रतिवेदनमे सहमति नाइ भइलेके बाद थप गृह कार्यकै खातिर बैठक 3 नेता लोगनकै जिम्मा दिएले बाट उ लोगन प्रतिवेदनकै विषय मिलाए खातिर कोसिस गरेवाला बाणे। कार्यदलकै सदस्य समेत रहल एमाले सचिव राजन भट्टराई प्रतिवेदनकै मस्यौदाकै बैठकमे उठल विषय समावेश कैकै अन्तिम मस्यौदा पेश गरे खातिर जिम्मेवारी दिएल बाट। बैठक दोसर आगामी 1 गते बैठेवाला बाट थापाके प्रतिवेदनमे ओलीके पदमे रखिके ही पार्टी आगे बढाएके परिविचार बाट। वार पोखरेलके प्रतिवेदनमे पार्टीके पुनर्गठनके खातिर नेतृत्व त्याग गरेके परि लगायतके विषय समावेश बा। ऐसे वहार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाके पूर्व निर्धारित एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनी कार्यतालिका प्रभावित बनल बाट। नेकपाके वैशाखमे सम्पन्न केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिके बैठक अगहन 11 गतेसे 15 गते तक काठमाडौँमे महाधिवेशन गरेके निर्णय भइल रहल। बैठकके निर्णय अनुसार इहे असार सावन मसान्त तक पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता विवरण अभियान सञ्चालन गरेके कहल गेल रहल। अहिलेके भादो 15 गते तक वडा, भादो 16 गतेसे मसान्त तक पालिका, कुवार मसान्त तक जिल्ला और कार्तिक 15 गते तक प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेवाला कार्यतालिका सार्वजनिक भइल रहल, लेकिन हाल तक महाधिवेशन तालिका अनुसार काम होके राइसकल बाटे। पार्टीकै प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला केन्द्रीय महाधिवेशन मिति प्रभावित नाइ होकेवाला किसिमसे कार्यतालिका संशोधन होकेवाला जानकारी दिएले भने जेकर खातिर 30 लगत्त केन्द्रीय संयोजन समितिकै बैठक बैठेवाला बाटे। केन्द्र महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक कैले पर भी अधिवेशन सम्पन्न गरे खातिर आवश्यक कार्यविधि नाइ होतिदानी समस्या भइलेसे तरेवाला समितिकै शिकायतप्रति पार्टीकै ध्यान गइल उहाँ बताउले भने।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह रसुवाकै भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माण के लिए बजेटका अभाव होके नआइदिएको स्पष्ट जनाउले भने सिंहदरबारमै विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कैल गेल। तमाम जिल्ला और स्थानीय तहके जनप्रतिनिधि लोगनके साथ छलफल करत प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यके सब निकाय क्रियाशील भइल उल्लेख करत राहत तथा पुनर्निर्माण के लिए बजेटके अभाव होके नआइदिए खातिर बताउले भने ऐसे उहाँ प्रभावित क्षेत्रमा बाढी पाछेकी अवस्था हालके परिस्थिति अब आगे बढाएके परिकदम और पुनर्स्थापना लगायतके विषयमा जानकारी और सुझाव लिएले भने यो क्रममा बाढी प्रभावित क्षेत्रके जनप्रतिनिधि लोगन बाढीके कारण सडक सञ्जाल नाइ होती दैन राहत तथा पुनर्निर्माणमा समस्या लौकलेसे क्षतिग्रस्त सडकके जल्दिएसे खुलाएके परि बताउले भने नुवाकोटके विदुर नगरपालिकाकै प्रमुख राजन श्रेष्ठ त्रिशुली नदी और आसपासके करिब 19 पुल दहवावल और रसुवा धादिङ विदुर जोडेवाला सडक खण्ड अवरुद्ध होतकी दैन राहत तथा उद्धारमा समस्या लौकल बताउले भने होल्डिङ सेन्टरके चाप और सम्भावित महामारी कम गरे खातिर प्रभावित परिवार लोगनके कोठामे भाडा दिएके और नगरपालिका 6 महिनाके खातिर बर्तन ग्यास चुली सिलिन्डर और खाद्यान्न सहितके प्रति परिवार 10,000 रुपियाँ दिएके तयारी कैल जानकारी दिएले भने त्रिशुली वपारल प्रदेश स्तरीय अस्पताल और बस्ती जोडेके खातिर तत्काल ह्युम पाइप डाइभर्सन बेली ब्रिज रखेवाला विषयमा प्रधानमन्त्रीके साथ छलफल भइल बताउले भने प्रधानमन्त्री साथ तिनैठो सरकार मिलके आवश्यक पूर्वाधार तत्काल बनाएवाला प्रतिबद्धता जनावल विदुर नगरपालिकाकै प्रमुख श्रेष्ठ जानकारी दिएले भने ऐसे प्रमुख श्रेष्ठ बस्ती विकास करतिदान सांस्कृतिक ऐतिहासिक और कृषि परिवेशके नबिगाडिके सुरक्षित जग्गामै ल्यान्ड पुलिङ मार्फत बस्ती बैठाए खातिर सुझाव दिएले भने छलफलमै नुवाकोट रसुवा धादिङ गोर्खा और तनहुँकै विपद प्रभावित 15 स्थानीय तहकै प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य लोक सहभागी रहने ये बीच भोटे कोशीमा आयल बाढीसे सवारी साधन तथा यातायात क्षेत्रमा भर करिब 12,90,00,000,000 रुपैयाँके भौतिक क्षति पुगल बाटे बाढी उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन साथके प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी भन्सार और सडक मेरल सवारी साधन तथा यातायात क्षेत्रमा बडा क्षति पुगौले बाटे राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा सार्वजनिक भएल द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन ऐसन देखाउले बाटे प्रतिवेदन अनुसार बाढीके कारण रसुवागढी भन्सार कार्यालयके भौतिक संरचना ध्वस्त होतकी दैन भन्सार पासके खातिर ल्यावल गेल सवारी साधन और अन्य सडकमे चल रहल कैकि झण्डै 13,00,00,000 रुपैयाँ बराबरके क्षति पुगल प्रतिवेदनमे उल्लेख बाटे प्रतिवेदनके अनुसार बाढीसे गल्छी बेत्रावती स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक खण्डमे चल रहल पार्किङमे रखल गेल तथा सामान ढुवानीमे रहल सवारी साधनमे बडा क्षति पुगल बाटे बाढी और ग्रेगान बहावसे दहल तोपाइल और क्षतिग्रस्त भइल सवारी साधन तथा यातायात सम्बद्ध सम्पत्तिमे भर 12,90,25,00,000 बराबरके क्षति पुगल बाटे बाढीके कारण सडक सञ्जाल विच्छेद होके सवारी साधन सञ्चालन हुए नसकतकी दाइन ढुवानी और यातायात व्यवसाय तरफ थप 31,45,00,000 रुपियाँ बराबरके आर्थिक नोक्सानी भइल बा। प्रधानमन्त्री बालेन शाह बाल बालिका लोगनमे करेवाला लगानी राष्ट्रके सुखद भविष्यके खातिर भइल बताउले भने राष्ट्रिय बाल दिवस 2083 के अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी करत प्रधानमन्त्री शाह ऐसन बताउले भने यी वर्ष बालापनके रक्षा भविष्यके सुरक्षा कहेवाला राष्ट्रिय नाराके साथ यी दिवस मनाओल जात बा यी वर्षके नारासे बाल बालिका लोगनके वर्तमान सुरक्षित और अधिकार सम्पन्न बनाके भर राष्ट्रके समृद्धि भविष्य निर्माण गरे सकेवाला गहन सत्यके जोड दिहल गेल प्रधानमन्त्री शाह उले कहिले भने नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 के पक्ष राष्ट्रके रूपमा अनुमोदन कैके भेदभाव रहित सर्वोत्तम हित जीवन जिएके और विकास पाएवाला अधिकार तथा विचार व्यक्त गरेवाला अधिकारमा आधारित सिद्धान्तप्रति अन्तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनावल गेल बाटे ऊ मूल्य मान्यता के नेपाल के संविधान के धारा 39 बाल बालिका के हक राष्ट्रीय बाल बालिका नीति 2080 और बाल बालिका संबंधी ऐन 2075 मौलिक हक तथा कानूनी अधिकार के रूप में सुदृढ़ ढंग से सुनिश्चित कैले बाटे अब के मुख्य प्राथमिकता संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार के प्रत्येक बाल बालिका लोगन के दैनिक जीवन में वास्तविक अनुभूति कराए वाला रहल उल्लेख करत प्रधानमंत्री शाह बाल बालिका के क्षेत्र में काम करे खातिर प्रधानमंत्री 3 ठो तह के सरकार बीच समन्वय होखे के परि बताउले भने
संघ राष्ट्रिय नीति कानूनी तथा संस्थागत आधार के सुदृढ़ बनाए वाला प्रदेश सरकार समन्वय और सेवा के विस्तार करे वाला और स्थानीय तह लोग बाल बालिका लोगों के सबसे नेरे के सरकार के रूप में जोखिम पहचान संरक्षण सेवा प्रवाह और बाल मैत्री वातावरण निर्माण करे वाला किसिम से तीन तह के प्रयास के एकठो परिणाम मुखी दिशा में जोड़े खातिर आवश्यक रहल प्रधानमंत्री शाह बताओले बने। बलात्कार यौन हिंसा और साइबर बुलिंग अन्त्य गरेके खातिर संसद में संकल्प प्रस्ताव पुगलबाट नेकपा एमाले के सचेतक नीता घतांगी प्रस्तावक रहल। संकल्प प्रस्ताव में सांसद लोगन श्रद्धा कुंवर छेत्री, अम्बिका देवी संग्रौला, रेणुका काउचा, खुशबू ओली, बलावती शर्मा और पार्वती बिक समर्थक बाणे। नेपाल के संविधान प्रत्येक नागरिक लोगन के सम्मान पूर्वक बासे पाए वाला हक सुनिश्चित कैले बाटे, लेकिन व्यवहार में महिला तथा बाल बालिका लोगन ऊपर होके वाला बलात्कार, यौन हिंसा और साइबर अपराध जैसन घटना निरंतर वृद्धि हो रहा कहत ओकर अंत्य करे के लिए उ लोगन संसद में संकल्प प्रस्ताव ले गए बाणे। एक तरफ बालिका तथा किशोरी लोगों के ऊपर होके वाला यौन अपराध से उन लोगों के मानसिक, शारीरिक और भविष्य में दीर्घकालीन असर पुग रहल बाटे। दूसर तरफ डिजिटल प्रविधि के विस्तार के साथ साइबर बुलिंग, चरित्र हत्या जैसा नया प्रकृति के अपराध से महिला लोगों के सम्मान और गोपनीयता में गंभीर आघात पुगावल प्रस्ताव में उल्लेख बाटे। कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन, शीघ्र न्याय, पीड़ित के सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना और साइबर हिंसा नियंत्रण करे खातिर राज्य के संयंत्र थप जिम्मेवार बनाए खातिर आवश्यक भैले से संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत कैल गेल जनाओल गेल बा। अब बैंक तथा वित्तीय संस्था के एटीएम से 100 रुपया दर के नोट भी मिले वाला बाट नेपाल राष्ट्र बैंक सर्वसाधारण लोगन के सहजता तथा नेरे आ रहल त्यौहार के समय में बैंक से होके वाला भीड़ भाड़ कम करे के और एटीएम मशीन से 100 रुपया के नोट भी वितरण करे वाला व्यवस्था मिलाए खातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था लोगों के निर्देशन दिएले बाटे। राष्ट्र बैंक के मुद्रा व्यवस्थापन विभाग नेपाल बैंकर्स संघ के पत्र लिखत ऐसा व्यवस्था मिलाए खातिर आग्रह कैले बाटे। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था लोगन एटीएम मशीन से 1500 रुपया के दर के नोट भर दियत आयल बाटे, जेकर कारण छोट दर के नोट निकाले खातिर ग्राहक लोगन बैंक के काउंटर में पुगे के परल देता बाटे। विशेष करके दशहरा के समय में छोट दर के नोट सटही करे खातिर बैंक में सर्वसाधारण लोगन के ज्यादा भीड़ लगला। कुछ बैंक लोगन के साथ प्राविधिक तैयारी के बारे बुझत के दायन एटीएम से 100 रुपया के नोट वितरण करे खातिर संभव लौकल राष्ट्र बैंक जनौले बा। भाद्र शुक्ल तृतीया दिन मनाए वाला हरितालिका तीज पश्चिम नवलप्रासी सहित देशभर मनावल जात बाटे। तीज पर्व आज महादेव के पूजा आराधना कैके मनावल जात बा। भाद्र शुक्ल तृतीया में व्रत बैठी के शिव पार्वती के पूजा उपासना कैल जाते पारिवारिक सुख, शांति और कल्याण के प्राप्ति होके वाला धार्मिक विश्वास बाटे। सत्ययुग युग में हिमालय के पुत्री पार्वती गौरी घाट में बैठी के तपस्या कैके महादेव के पति के रूप में पाए वाला वरदान पावल विश्वास में ई व्रत शुरू भइल पौराणिक मान्यता बाटे। वरदान विपरीत पिता हिमालय पार्वती के इच्छा विपरीत विष्णु के साथ विवाह कई दिए के खोजले के बाद उनकर साथी संगिनी लोग आपन समस्या सुनौले रहलें। पार्वती समस्या में परल था पौले के बाद उनकर साथी लोग हरण कई के ले जाके केहू नाई देखे वाला जगह में पार्वती के लुका के रखले रहलें। साथी लोगन लुकावल जगह में पार्वती निराहार व्रत बैठ के महादेव के पति के रूप में प्राप्त कैले रहलिन। ऐसन पार्वती साथी लोगन द्वारा हरण भइल दिन भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन भइले से उहे समय से हरितालिका तीज के व्रत लिहे वाला प्रचलन शुरू भइल। धर्मशास्त्री लोगन के मत बाटे संस्कृत भाषा की हरित और आलिका दुई शब्द मिलके हरितालिका शब्द बनल बाटे, जेमे हरित शब्द के अर्थ हरण कैल और आलिका शब्द के अर्थ संघरिया कहके बुझे सकल जाला। सतयुग में आज के दिन निराहार व्रत बैठ के पार्वती महादेव के स्वामी पौले से आज के दिन में व्रत बैठत के दायन मनोकामना पूरा होके वाला धार्मिक विश्वास बाटे। लेकिन एकर अर्थ सब नारी निराहार व्रत बैठे के परी कहे वाला नाई रहल। धर्मशास्त्री विद्य लोगन के कहना बाटे निराहार, जलहार और फलहार कहके व्रत के तीन किसिम होला। सके वाला लोगन निराहार, नाई सके वाला लोगन जलहार और जलहार भी नाई सके वाला लोग फलाहार व्रत बैठल उत्तम मानल जाला। नारी लोगन परिवार के अभिभावक के रूप में प्रतिनिधित्व कैके व्रत बैठे वाला भैले से नाई सकल अवस्था में अथवा महिनवारी भैल समय में पुरुष लोगन भी व्रत बैठल हैं। समग्र में मनोकामना पूर्ण कराए वाला और सब परिवार लोगन के कल्याण के लिए ई व्रत के
प्रयोजन रहल धर्मशास्त्रविद लोगनके मतबाट आत्मावादी और ईश्वरवादी दुनो यी व्रत लेने समग्रमे परिवारके यी लोकमे सुख शान्ति और परालौकिक सद्गतिके खातिर तीजके व्रतके महत्वबाट व्रत सकाम निष्काम नृत्य नैमित्तिक और काम्य कहीं के पांच किसिम के होला। तीज के व्रत नित्य और काम्य दोनों किसिम के भइल धर्मशास्त्री के मान्यता बाटे। तीज के व्रत हिंदू भर के लिए भर न हो के मानव के खातिर भइल बात धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में उल्लेख बाटे। ये बीच लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य हरितालिका तीज के नारी के सम्मान समानता और सामाजिक रूपांतरण के संदेश फैलाए वाला अवसर के रूप में मनाए के आग्रह कैले बने। हरितालिका तीज के अवसर में शुभकामना संदेश जारी करत मुख्यमंत्री आचार्य तीज नेपाली महिला लोगन अपन भावना अनुभव और आवाज अभ्यक्त करे वाला महत्वपूर्ण अवसर के रूप में विकसित होत गैल बताले बने। वहाँ तीज के माध्यम से महिला लोग अधिकार समानता सामाजिक न्याय महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक रूपांतरण के विषय में समेत जागरण फैलत गैल उल्लेख कैले बने। ऐसे कही के तिहार के लक्षित करत कपिल वस्तु में संचालन कैल गई लागू औषध सेवन चेक जांच के क्रम में एक दिन चार जना चालक पकड़ाऊ पड़ल बने। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बुद्ध भूमि नगर पालिका दुई गोरु सिंगे में कैल गई चेक जांच के क्रम में ऊ लोगन लागू औषध सेवन कैल अवस्था में मिलल बने। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तु के टोली सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन के चालक लोगन के लापसी और महापसी परीक्षण कैले रहल। परीक्षण करत गए चार जना में लापसी और एक जना में मापसी सेवन कैल अवस्था में पकड़ाऊ कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तु के सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमार सिंह तिहार के समय में सवारी आवागमन बढ़े वाला भैले से दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए लागू औषध तथा मादक पदार्थ सेवन कई के सवारी चालन चलाए वाला लोगों के ऊपर निगरानी और कार्यवाही के प्राथमिकता दिया गया बतौले बने। गुलमी में नदी दबावत के दौरान बेपत्ता भइल महिला मृत अवस्था में मिलल बाड़ी। नैहरे जाए के खातिर घर से रिंगल महिला नदी दबावत के दायन वहाँ बेपत्ता बनल रहलिन। जिला के मुसिकोट गाँव नगरपालिका और इस्मा गाँवपालिका के सीमाना में परे वाला निस्ती नदी वहाँ के दहौले रहल। मुसिकोट नगरपालिका के इंद्रे गौड़ा घर भइल 29 वर्षीय कल्पना पुन इस्मा गाँवपालिका चार हुल नैहरे जाए खातिर रिंगल रहलिन। काली साँझी के नदी दहवावल जानकारी मिलने के बाद प्रहरी और स्थानीय साथ के खोजी काम में वहाँ मृत अवस्था में मिलल। जिला प्रहरी कार्यालय गुलमी के सूचना अधिकारी डीएसपी वीरेन्द्र वीर विश्वकर्मा जानकारी दिए बने। खोजी के काम में इसमा प्रहरी चौकी और पौधी अमराई से प्रहरी के टोली खटल रहल। नदी पार करे वाला क्रम में नदी वहाँ के दहावल खबर पहले के बाद प्रहरी खटल रहल। सब पोस्टमार्टम के खातिर गुलमी अस्पताल में रखल गई बा। अब सुनल जा अंतर्राष्ट्रीय खबर। चीन रूस और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र के नेता लोगन भारत के राजधानी नया दिल्ली में सम्मेलन के दूसरा दिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय विषय में छलफल कैले बने। नेता लोगन विश्व के आर्थिक विकास व्यापार ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहकार्य लगायत के विषय में छलफल कैल अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था जनौले बाट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच आपसी सहकार्य के थप बलिगर बनाए के परिमे जोड़ दिए बने। वहाँ ब्रिक्स विश्व जनसंख्या के बड़ा हिस्सा और विश्व अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण भाग प्रतिनिधित्व करे वाला समूह भइल बताले बने। ऐसे चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई व्यापार तथा लगानी सहजीकरण डिजिटल उद्योग स्मार्ट उत्पादन तथा प्रतिभा विकास के क्षेत्र में विस्तारित ब्रिक्स सहकार्य के खातिर पांच महत्वपूर्ण पहल प्रस्ताव कैले बने। वहाँ विश्व में अभिन्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर थप विकास हासिल करे के परि तथा व्यवहारिक सहकार्य के खातिर बलिगर आधार निर्माण करे के परि में जोड़ दिए बने। वहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान लगायत के नेता लोगन सहभागी सम्मेलन में विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि और तमाम क्षेत्रीय द्वंद के विषय में छलफल भइल बाटे। कल यहाँ से शुरू भइल 18वां संस्करण के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज समापन भइल बाटे। ये क्रम में भारत आए वाला वर्ष के शिखर सम्मेलन के खातिर अध्यक्षता चीन के हस्तांतरण कैले बा। अंत में छो खेल खबर। भारत अफगानिस्तान के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल में 7 विकेट से हरौले बाटे। नया दिल्ली के अरुण जेटली रंगशाला में अफगानिस्तान दियल 157 रन के लक्ष्य भारत 13 ओवर 4 बल में 3 विकेट गंवा के जीत निकले बाटे। भारत के अभिषेक शर्मा उत्कृष्ट बैटिंग करत 32 बल में 82 रन बनौले बने। वहाँ 7 चौका और 7 छक्का प्रहार कैले रहें। ऐसे ईशान किशन
33 बलमै 42 रन बनाउले भने वार अफगानिस्तानकै नाभी 2 विकेट ढिले रहने। यसै पहिले टस जितके पहिले ब्याटिङ गैले अफगानिस्तान निर्धारित 20 ओभरमै 8 विकेट गुमाके 156 रन बनाउले रहल। अफगानिस्तानकै अजमतुल्ला ओमरजाई 64 रन बनाउने अरू मोहम्मद नाभी 33 रन जोडले रहने। भारतकै अर्षदीप सिंह 3 विकेट लिएले भने अभिषेक शर्माकै आक्रमक ब्याटिङकै साथ भारत लक्ष्य सहज रूपमै पुरा गरद 3 खेलकै श्रृङ्खलामै अग्रता लिएले बाटे। 3 खेलकै T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत दुसरा खेल बिहान और तिसरा तथा अन्तिम खेल बिफेकै होखेवाला बा। हाल खबरकै अन्तमै खास खास खबर फेरि एक बेर। काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन प्रक्रिया आगे बढाएवाला संस्थापन इतर समूहकै निर्णय एमाले पुनर्गठनकै खातिर सहमति गरेकै लिए 3 नेता लोगनकै जिम्मा दिएलस्। नेकपाकै महाधिवेशनकै खातिर बैठक बोलाएवाला तयारी। भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमै राहत तथा पुनर्निर्माणकै खातिर बजेटकै अभाव होके नाइ दिएवाला प्रधानमन्त्री शाहकै कहनाम। यातायात क्षेत्रमै भर करिब 12.90 अर्ब करोडकै भौतिक क्षति। बाल बालिका लोगनकै क्षेत्रमै काम गरेकै खातिर 3 तहकै सरकार लोगनकै समन्वय। बलात्कार यौन हिंसा और साइबर बुलिङ अन्त्य गरे खातिर संसदमै संकल्प प्रस्ताव पेश। और भारतकै ब्रिक्स सम्मेलनमै विश्व अर्थतन्त्र और भू राजनीतिक तनाव बीच सहकार्यकै खोजी। पहिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै भारतकै सहज जित। अफगानिस्तान 7 विकेटसे पराजित। यही के साथै आजकै भोजपुरी हाल खबर पूरा भइल। अपन गाउँ समाजकै खबरकै लिए सामुदायिक रेडियो परासी सुनत रहल जाई। सुरेश यादव बिदा होत बाडी। नमस्कार।

0: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
1: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
2: जता दौडिए पनि त्यस्तै, यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
3: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
0: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
2: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
0: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 078-520-881।
2: साथै हाम्रो शाखा सुनवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 078-590-588।
0: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
4: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
5: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लक्कड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
4: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेगा। एक बार जाके तो देखी।
6: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
7: संपर्क खातिर
6: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 98-74-68-730 और 98-194-60-630।
8: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
9: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मियाँ हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
10: नसा तथा मनोरोग,
11: हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, इनडीड, इनडीड,
12: एक्मी,
11: फार देयर, राइट हियर,
12: एक्मी वाईफाई इंटरनेट,
13: MPLS data connectivity, cable internet serves you always.
12: ACME
13: with you always, everywhere.
12: Contact 078-57-00-73.

50002 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रिणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।

0: छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तीन तीन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
4: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
3: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
5: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
6: संपर्क खातिर
5: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान, मोबाइल 9874768733 और 9914960630।
7: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
8: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल, मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
7: चला, इतना बढ़िया सोच तोहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
9: जी, हमन की यहाँ टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, टोटी, बाथरूम फिटिंग, किचन डेकोरेशन, मोटर, पानी टैंकी, शावर, मिक्सर, सीसा, टेबल टॉप, कम्बोर्ड सीट, CPVC, PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
10: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठी बारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल, मोबाइल 9120425131।
11: ए चाचा, देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गई बा का हो, हमके तो एकदम धुधुराह लौकत।
12: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा, आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गई बाड़ी।
13: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा? अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
5: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु, आँख में मास उभरल, टेढ़मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के, कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर, बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
11: संपर्क भगवती नेत्रालय, रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड, आँख अस्पताल के ठीक सामने, मोबाइल 9876728015 और 9875722।
14: सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
1: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
14: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
15: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न
16: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज, प्रगत